0: इस वक्फे के बाद आप सुनेंगे नातू पर मबनी प्रोग्राम महफिल नात। सुनते रहिए इंस्पायर FM।
1: आप लुटन से समात फरमा रहे हैं। Inspire FM 105.1।

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM. From the heart of Bedfordshire in Luton, this is Inspire FM.
1: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
2: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
3: अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर लें, और अगर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद है तो इसे भी ऑन कर दें और तसल्ली कर लें कि आपका घर चोरों से महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
4: इट डजंट टेक मच टू ब्रिंग सम डिफरेंस। यू गिव सम चेंज व्हिच मेक्स अ चेंज, बिकॉज नथिंग गेट्स माइलेज लाइक अ चैरिटी। जस्ट अ लिटिल चेंज टर्न्स इनटू अ चेन, एंड बिफोर वी नो इट द रिजल्ट्स आर मैसिव। So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
5: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिसेंट होल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
6: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीज़ें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीज़ें हरगिज़ ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

अगर आपको शक है कि आपके पड़ोसी किसी मुश्किल में हैं, कोई चोर या डाकू इनके घर में घुस गया है या इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया है, तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। आपके इस अमल से आपके पड़ोसी की जान या इनका साजो सामान बच सकता है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।